करे आप जाई पे रखे आप तेस वि जंतु पाए कै देखे थाप उथाप किसनो किसनो किसनो कहिए नानका सब कुछ।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहिन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कह जै कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिजै त्रिभवन महीप सुर नार असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और न यहि महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद्धत ते मत चूक है रे मान भेद विभेद न जान बियो प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जुन का हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जुन का हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो डगमग शाडरे मन बौरा अब तौ जरे मरे सिद्ध पाइया लीनो हाथ संधौरा करवत भला न करवट तेरी करवत भला न करवट तेरी लाग गले सोना बिनती मेरी हाँ वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे कौ मारे कबीर मोहे मरने का चाहो है मरो तहार कै द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार फुरमान तेरा सिराई ऊपर फिर ना करत विचार तुही दरिया तुही करिया तुझै ते निस्तार बंदे बंदगी एक तियार साहिब रोस तरो के प्यार नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार कह कबीर गुलाम घर का जिया ए पावै मार अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपना त
तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामण सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए हुए सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सचे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दै साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सत

केते गणों असंख अवगण मेरे असंख अवगण खते फेरे नित प्रात सद भूलिया मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादे कुलिया लोक करत बेकार बिखड़े प्रभ ने रहूते नेरिया बिनवंत नानक दया तारहु काड पव जल फेरिया सलोक निरत ना पवै असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिला निथावे था शंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइया आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ ते आइया ते आए सो प्रभ सदा अपना मनहे चिंदया पाइया

आरोप मान तान प्रभु आगे आप सगल मिटाइया बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइया सलोक रे मान ताको त्याइया सब विद जाके हाथ राम नाम तन संचिया नानक निभ साथ संत साथी अड़ा प्रभ एक दूसरा।

सबाया छंत अब मन छूट गया। साधु संग मिले गुरमुख नाम लाया, ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिट किल बिख, बुझी तपत अगानिया गह पूजा।

एक पाले वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जैत सरी महला पंजवा घर दूजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक ऊंचा आगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ।

पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब जाने ला सब तेरे वास तेरा कर पला।

हे मन हर जीत्याए तू, एक मन एक चित पाए। हे मन हर जीत्याए तू, एक मन एक चित।

गए मसकत खाल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

गए मसकत का नानक दे मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया खा दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज बिडान तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखान जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबान हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तेत सरवरड़ पहिले निवासा पाणी पावक तिन्ह किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेत समूढ़ मन हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्राणवत नानक तिनकी शरण जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजव
ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ ਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰ ਕਿਤਨ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब वैरन को आज संघरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतर। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। घट घट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब दिह अपार। जब आकर्ख करत हो कब हों, तुम मैं मिलत देह धर सब हों। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। आंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाई अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। अव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोस्त जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई।
एक वार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उवारा।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें हम एक न जाने ओ श्री अस पा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां बाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बेसारण अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ

सुत अपराध करत है जेते, जननी चेतना राखस तेते, रामैया हों बारिक तेरा, काहे न खांडस अवगण मेरा। जे अत करोप करे करताया, तां पी चेतन राखस माया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। हर के सेवक जो हर पाए, तिन की कथा निरारी रे। आवे है ना जाहे ना कबहूँ मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। हर हर जन दोई एक है, बेब विचार कछ नाहि। जालते उपजत रंग ज्यों, जल ही बिखै समाहि। जिन्ना न बिसरै नाम, सेक नेहिया। भेद न जानु मूल, साई जेहिया। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा काट मरै, कबहू न छाड़ै खेत। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित बहु आनंदिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सुख टल गुर सेविए, एहन सुसहज सुभाव। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खस।

जो जानिया तो मन मानिया। कुंभ कमल जल भरिया, जल मिटिया उबा करिया। कहो कबीर जन जानिया,

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शौन बिख बिख खाई, माया मो परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसो कुरसो चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, शिरशाह जिस पास बैठिया सोही, सबना दावी सा, सज्जन सच्चा पातशाह, शिरशाह जिस पास बैठिया।

अपने सूटन को जतन करो, हम सूटे तुम आराधे, जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बदन तुम बाधे, अपने सूटन को जतन करो, हम सूटे तुम आराधे, माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी।

पटल सब जगत व्यापियो। भगत नहीं संतापा, कह रविदास भगत एक बाड़ी। अभी का स्यों कहिया,

आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जिय जंत सब थारे, सगल को दाता एक अलख मुरारे, आप ही धारण थारे, कुदरत है देखारे, बरन चेहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दारे, तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या।